सिमरन ज्ञान ते अणतत बुद्ध प्रभु का सिमरन जप तप पूजा प्रभु का सिमरन बिनसा दूजा प्रभु का सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु का सिमरन दरगाह मानी प्रभु का सिमरन हुए सुपला प्रभु का सिमरन सो फल फला से सिमरह जिने आप सिमराए नानक ताकै लह गो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा प्रभु का सिमरन उदरहि मूचा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझा प्रभु का सिमरन सबके सुजा प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूरन आसा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि समाए प्रभ जी बसा साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरह से तनवंते प्रभु को सिमरह से पतवंते प्रभु को सिमरह से जन परवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरह से बेमोह ताजे प्रभु को सिमरह से सर्ब के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभु को सिमरह से परि उपकारी प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तिन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरह बसा हर नेरे संत कृपा ते अणदिन जाग नानक सिमरन पूरह भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरै से जन जिन को प्रभ मैया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेत उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगले अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना कड़कण नाथ नाथ सरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जह महापयान दूत जमदला तह केवल नाम संग तेरा चला जह मुश्किल होवा अतपारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरा हर को नाम कोट पाप पर हरा गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोरी बांध न परा हर का नाम जपत निस्तरा अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपते अघावै जिह मार्ग इह जाति अकेला ता हर नाम संहोत सुहेला ऐसा नाम मन सदा तिहाइय नानक गुरमुख परमगत पाइय छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिगन जह आए संघर हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावा विश्राम हौ मैला मल कबू न तूवा हर का नाम कोट पाप खूवा ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साध कै संग जिह मार के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहां संग तोसा जिह पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना सियानु हर का नाम तह नाल पछानु जह महा भयान तपत बहु काम ता हर के नाम की तुम उपर शाम जहां त्रिखा मन तुझ करखा तह नानक हर हर अमृत बरखा भगत जना की बरतन नाम संत जना का मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कह हर नाम निधान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंगेका नानक जन कै बिरत बबेका हर का नाम जन को मुक्त जुगत
ਹਰ

0: जाप अष्टपदी जब अकार इह कछ ना दृष्टेता पाप पन तब कहत होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर बोध के संग कमात जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरक शोक किसे व्यापत जब अपन आप अप पर ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर तीजा नान करना हारना दूजा जब होवत प्रभ केवल तहनी तब बंद मुकत कहो किसको गणी जब एक हर अगम है पार तब नरक सुर्ग कहो कौन हो तार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब शिव सख्त कहो कि ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरा तब कवन डर कवन कत डरा आपन चलते आप करना हार नानक ठाकुर अगम है अपार अब नासी सुख आपन आसन तह जन मरण को कहाँ बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत है गोचर प्रभ एका ताव चित्र गोपत किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर है गहदे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही चर्जा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जहाँ निर्मल पुरुख पुरुख पद होता तह बिन मैल कहो कह तोता जहाँ निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तहाँ छाल छिदर लगत को कीस जह जो स्वरूपी जो संग समावा तह किस भूह कवन तृपतावा करण करावन करण हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जह सर्ब कला आपे परबीन तह वेद के तेब कहाँ को चीन जब अपन आप उतारा तो सगन अप सगन कहाँ विचारा जहाँ आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानके अपनी गत जानो आप जह शाल छेद भेद समाया ऊहां किसे व्यापत माया आपस गो आप है आदेश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जहाँ एका एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जहाँ आपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनना हारा बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस कहो आपे पहुचा जहाँ आप रचो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार पाप पुनता पही कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम भय पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानकेका जह अवगत भगत है आप जह पसरा पसार संत प्रताप दोहू पाका आप धनी उनकी शोभा उनहूं बनी आप कौत कर आनंद चोज अप रस भुगन निर्जोग जिस भावा तिस आपन ना लावा जिस भावा तिस खेल खिलावा बेशुमार यथा अगणत अतोला जो भुलावा हो त्यों नानक दास बोला श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे बरतन हार नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुनने हार आप एक आप विस्तार जात इस भवत सृष्टि उपाय अपने भण लय समाय तुम ते पिन नहीं किश हुए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कबेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब ता का हाथ दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राख तिस को न मारा सो मुआ जिस मन बिसारा तिस ताज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकर सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत पार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने करतब जाना आप अंतर जामी रहो ब्या प्रतपाला जीअन भांत जो जो रचे सो तिस त्यात जिस पावै तिस लय मिलाए भगत कर हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हर नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाकर मन बसया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अन दिन पूजह गुर के पैर ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਖਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਕਹਿ ਸੋ ਆਓ, ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਾਪੇ ਖੋ ਨੇਰਾ, ਮਿਟਿਆ ਗਿਆਨ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ, ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਾਲਤ ਪਲਤੋ ਲਿਹ ਸਵਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸਾ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪਰੀਖਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਉ ਜਾਏ, ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਦਰਗਹ ਨਿਭਹਿ ਖੇਪ ਤੁਮਹਾਰੀ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੁਜ ਜਾਏ, ਉਭਰੇ ਰੱਖ ਨਹਾਰ ਧਿਆਏ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਪਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਪਉ ਚਨਹਾਰ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦ ਉਦਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ, ਤਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਲ, ਅਮਰ ਪਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪੇਠਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਗਲਾਗਾ ਮੀਠਾ, ਸਗਲ ਸਮਿਗਰੀ ਏਕ ਸਕਟ ਮਾਹੇ, ਅਨਖ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਹੇ, ਨਾਉ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਸਕਾ ਬਿਸਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਤ ਨਾਦ, ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ, ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ, ਤਰਨ ਮਾਹਿਆ ਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਬਾਣ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਸ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਸਸਿਅ ਸੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੇਕ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲਾ, ਆਪ ਆ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ
1: ਖੇਲ ਬੋਲ ਨ ਪਾਈਏ ਗੁਣ ਅਮੋਲ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਧਾਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਏ ਬਿਸਾਸ, ਨਨਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੁਨਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਣੇ ਸੋ ਭਜਨ, ਸਰਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਰਨ ਜਿੰਜਾ ਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸਤਬੰਧ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕੈਤ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਨ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੇ, ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੋਈ, ਆਪ ਸਤ ਗਿਆ ਸਭ ਸਤ, ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਲੀ ਉਤਪਤ, ਤੇ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੰਕਾਰ, ਅਨ ਗਲਾ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਭਾਵੇ ਤੇ ਲੈ ਮਲਾਏ, ਕੰਮ ਨੇੜ ਕੰਗਈਏ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪਾ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਤਰ ਗਜ ਸਾਹਿਬ ਜਣਾਏ, ਨਾ ਤਿਜਨ ਆਪ ਜਾਏ, ਸਰਬੋ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪੇਖਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨ ਆਪਣ ਜਾ ਸਾਪ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਆਵਣ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਿ ਮਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਹਿ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹਿ, ਆ ਗਿਆ ਆਵੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀਂ ਬੁਰਾ, ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਿਛ ਕਰਾ, ਆਪ ਆਪ ਲਾਗਰ ਤੂੰ ਦੰਦੀ ਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਜ, ਉਹ ਪੋਤ ਆਪ ਸੰਗਰਾਜ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਮੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੋ ਤਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਨਕੇ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਓ ਤਨਵੰਤ ਕਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੋਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਤਨ ਤਨ ਤਨ ਨਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਾਣਾ ਮਨ ਕਹੇ ਸਵਾਓ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੂਤ ਮੂਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, नानक ते जन कौ सदा नमस्कार सलोक पूरा प्राबे आराध्या पूरा जाका नाऊं नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं अष्टपादी पूरे गुर का सुन उपदेश पार बम निट कर पे गहु सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चैंद आस अंत्या गोतरंग सिन्हा की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास सागर तारो हर दन के पर लेव भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम गुर सहज आनंद सास परमानंद नरक नवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चे चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दो पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमरन बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध कै बिन मलीक लाल रतन सौंद मात हो दार आप तरे लोक निस्तार सब जिनता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द नाद वाजय सोन सोन अन करे प्रभ गाजय पट इकबाल मात के माथे नानक गुदरे तिन के साथ है सरन जो सुसरणी आए कर कृपा प्रभ आप मलाय मिट गए बैर पै सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेव आल झंझाल बिकार रहते राम ना सुर न कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र जीता सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर विशाता के पूर्ण होए प्रदान पुरपुर सब लोए साव दे उजबाए स्थान बनावे आवण जान हर तन कार्ज जन सोए नान जे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्याता जो प्रात्यान ज्ञान से टूते मिशनान चार पदार कन प्रगास सबके मसल ते उदास सुंदर चतुरता का बेता समदस्ती है दृष्टिता ए फल तीजन के मुह पन गुरु नानक नाम बचन मन सुन ए नदान जपे मन को सब

ज्ञान बिश्राम कोट पराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छूटे जाके मस्त कर्म प्रभ पाए साध सन नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म

0: सुपना आया, डर गया, मुड़को मुड़की होया। मसीह एदा अड़ी कद्या दिन चढ़िया। गुरु प्यारियो, जदों दिन चढ़िया तो साईं मियां मीर जी भी अचानक आ गए। हुण इन्हें अपनी सारी तकलीफ दसण दा यतन किया। सो सतसंग जी समा समाप्त है, कल नूं इत्थों ही आपां इतिहास नूं अगे तोरन दा यतन करांगे। भाई साहब जी आ गए, अरदास बेनती होवेगी। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। इतिहास बोलदिआं विचारां करदिआं बहुत सारीआं गलतियां हो जांदियां। गुरु साहिब ते गुरु की प्यारी संगत बख्शण योग है। ढाडी जथे नूं बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: जियो पिंड साबो तुमाद पिता हमो तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते तुमरी गात मेत नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी अग्गे ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जे डिठै साबत हो जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवे ताए सब थाइयों ही सहाय दसवें पातशाह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाइयों ही सहाय दसों पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दे दर दा ध्यान तर खालसे सब। बोलो जी वाहे। पंजां प्यारियां चौं सब जातियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई देख वाई देख के अंडर कीता तिन्हां गुरमो प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब। बोलो जी वाहे। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सीध दिते बांध बांध कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विच उबाले गए खोपरियां लुहाईयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते गए असहार दे शहीदो सिकिद केसां सवासां संग नवाई धर्म निहारिया तिना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब। बोलो जी वाहे। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तर खालसे सब। बोलो जी वाहे। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे

दास मोकु कर संतन की। मैं सुनदा हुंदा भी तुसी कर लैंदे जे, तां ही मैं विचों चुप करदा। कोशिश करिया करो जदों चुप करी तो उच्ची बोलिया करो। तुदे अगे अरदास।

Santa Cruz, सब जी दर्शन प्यासी दिन रात चेतवाओ आनंद नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत।

जिथे हम जाई साचा सृजनहार जियो। सबना का दाता करम विधाता, दुख विसारण हार जियो। तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो। सबना का दाता करम विधाता,

हर दरगा मान सोई जन पावै, जो नर एक पछाणे ओह नाम निध पावै, गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणे। एहनिस नाम तिसै काली जय, हरि उत्तम पुरख प्रधान जियो, जिन जगति उपाया धंधे लाया हों तिसै विटों कुरबान जियो। नाम लैन से सोहै तिन सुख फल होवै, मन से जिन जाह जियो। तिन फल तोट न आवै, जा तिस भावै जे जुग केते जाह जियो। जे जुग केते जाह स्वामी, तिन फल तोट न आवै, तिन जरा न मरना नरक ना परना, जो हर नाम ते आवै। हर हर करें से सूकै नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो। नाम लैण से सोहै तिन सुख फल होवै, मन से जिन जाह जियो। हर हर करें से सुकै नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो। नाम लैण से सोहै तिन सुख फल होवै, मन से जिन जाह जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग यासा महला पहला, संत कर दूजा। एक ओंकार सत गुरप्रसाद तो सबनी थाई, जिथे हो जाई साचा सृजनहार जियो। सबना का दाता करम विधाता, दुख विसारण हार जियो। धन वाहगुरु साहब जी, धन वाहगुरु साहब जी। मारू महला पंजवा। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माह दिखाया था। अन भाओ अचरज रूप प्रभ पेखिया, मेरा मन छोड़ न कतो जाया था। मानक पायो रे पायो, हर पूरा पाया था। मोल मोल न पाया जाए, कर कृपा गुरु दिवाया था। रहा आदिष्ट व गोचर पार ब्रह्म, मिल साधु व कत कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तह अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकाड़ घड़ियो रस पाया था। सहजे

मोहनी मोह लिए त्रै कुनिया, लोभ व्यापी झूठी दुनिया। मेरी मेरी कर कै संची, अंत की बार सगल ले शरिया। निरभउ निरंकार दयालिया, जी जंत सगले प्रत पलिया रहाउ। एकै श्रम कर काटी गढ है, एकै सुपने दाम ना छड है। राज कमाए करी जिन थैली, ताके संग न चंचल चलिया। एकै प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची ताज बाप महतारी। सुत मीत प्रात ते गुजी, ताके निकट न होई खलिया। होए अतूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित बिचारी। करे मड़ी मसानी बन में बसते, उठते ना कैला की पलिया। काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बस्यो जीता के। साध संग पे जन मुकते, कत पाई नानक नदर ने हलिया। मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सो, जाते प्रथा जात ना हो को। मात करम मैं जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे सास सवारिया। सोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल उरे अंतर धारो, बिखिया बंते जियो धारो। करण परा मिटे बिलाटा, जप गोविंद परम पौ फाटा। साध संग विरला को पाए, नानक ताके बल बन जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिस का निस्तारा रहाउ। मिथ्या वस्त सत कर मानी, हित लायो सठ मूढ़ी अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड पराए राता, माया माद मन तन संग जाता। त्रिशन ना बुझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत केला जात केला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाठ गौरी आप लायो, नानक किरत ना जाय मिटायो। पाश पंखी भूत अर प्रेता, बबद जोनी फिरतिया नेता। जै जानो तै रहन न पावे, थान बिहून उठ उठ फिरता आवे। मन तन बाशना बहुत विस्तारा, अंग बे मूठो बेचारा।

होशिया है। दया मोह की जय देवा, नानक लागो सेवा, मारू महला पंजवा। पतित उदाहरण तारण, बाल बाल बले बल जाइये, ऐसा कोई पिटे संत, जित हर हरे हर त्याइये।

तारण प्रत पारण एक बिनो दीना तुमरी भेद तुम ही जानो तुम जाल हमीना पूरन विस्तीर्ण स्वामी आहे आयो पाछे सगल पूमंडल खंडल प्राप तुम ही आशय अटल अखयो देवा मोहन अलख अपारा दान पामो संता संग नानक रेण दा सारा मारू महला पंजवा त्रिपत आघाए संता गुर जाने जिन मंता ताकि किस कहन ना जाय जाको नाम बढ़ाई।

अवगत स्यो मान्या मानो गुरमुख तत् ज्ञानो पेखत सगल ध्यानो तज्यो मन ते अभिमानो नेह चल तिन काठाणा गुर ते मैल पछाणा अंधन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूर्ण त्रिपत अघाए सहज समाध सुभाए हर भंडार आया नानक गुर ते पाया।

मन नाम नित नित ले चलत नाही अग्न सागर सुख मन तन दे रहाओ। बिरख छाया जैसे बिनसत पवन चूलत मेह हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एह मारू महला पंजवा। पुरख पूरण सुखदाता संग बस्तु नीत मरे न आवे न जाए बिनसै व्यापत उष्ण न सीत। मेरे मन नाम से कर प्रीत चेत मन में हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाओ। कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपे तिस सीद नवल नवतन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा। चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र दे चितार चरण शरण पज संग साधु पौ सागर उतरे पार।

नाम जाको अनाथ को है नाथ, महापौ जल माए तुरहो जाको लिखियो माथ। डूबे नाम बिना कन साथ, करण कारण चेतन आवे देकर रखे हाथ। रहाऊ

मारू अंजलि महला पंजवा घर सतवा एको अंकार सत गुर प्रसाद संजोग विजोग तरों ही हुआ पंच धात कर पुतला किया साहे कह फुरमायड जी देही वेच जीओ आए पया जिथै अगन पखै पढ़ारे उर्द मुख महंगु बारे सास सास संभाले सोई उथे कसम छड़ाए लिया विचों गर्भ निकल आया कसम विसार दुनी चित लाया आवे जाए पवाइये जूनी रहन नकती थाए पया मेहरवान रख ले अने आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार जिन चलिया नानक आया सुप्रवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पैणो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घाट कटे वासी सर्व निवासी अस्त्र जा का थान हे आवे ना जावे संगे समावे पूर्ण जा का काम हे भगत जना का राखण हारा संत जीवें जप प्राण आधार करण कारण सम्राट स्वामी नानक तुस कुर्बान हे एक ओंकार सत गुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा को सिमरिय जा मड़ उधरियो गनका हूं गत पाई रहाओ पंचाली को राज सभा में राम नाम सो दे आई ताको दुख हरियो करुणा मैं अपनी पैज बढ़ाई

सतगुरु ना भेट दुरमत घूमन घेरा दिसंतर पवा पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए बधेरा काची पिंडी शब्द न चीना उदर भर जैसे टोरा ना बाबा ऐसी रबत रबस नियसी गुर का शब्द एक लिव लागी तेरा नाम रते त्रिपता सी रहा कोली गेरू रंग चढ़ाया बस्तर पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी कर कर मांगा जग प्रबुद्ध मान अंध पतहारी परम भुलाना शब्द न चीन जुए बाजी हारी अंतर अगन न गुर बिन बुझ बाहर पूर तप गुर सेवा बिन भगत न होवी क्यों कर चीन से आप निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जप अठधर तीर्थ परम विगुच क्यों मल धुप पप छाणी खाक विभूत चढ़ाई माया का मग जूह अंदर बाहर एक न जाना साच कह ते शोह पाठ पढ़ा मुख झूठो बोला निगुरे की मत्योह नाम न जपई क्यों सुख पावा बिन नावे क्यों सोहा मुंड मुंडाए जटा सिख बांधी मौन रहे अभिमाना मनुआ डोला दा दिस्ताव बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत रस अमृत छोड़ महा बेख पीव माया का दीवाना किरतन मिटई हुक्म न बूझ पशुआ माह समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पहारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चित लाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीना लंपट है बाजारी अंतर बेख बाहर निबराती तांजम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेव बिचों आप गवाए छादन भोजन की आस न करई अचिंत मिलै सो पाए बकै न बोला खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए तन गिरही सन्यासी जोगी जे हर चरनी चित लाए आसन रास रहे सन्यासी एक स्यों लिवलाए हर रस पीवे ता सांत आवै निज कर ताड़ी लाए ब्रह्मा बिस्न महेश श्रेष्ठ नाम रत्ते विचारी खाणी बाणी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख नाम तो सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम रुथारी नाम बिना नहीं छूटस नानक साची दर्द उतारी मारू महला पहला मात पिता संजोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्दलिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार भव जल क्यों थरा गुरमुख नाम निरंजन पाइय अफरियो पार अफार टरे राहाव ते गुण विसर गए अपराधी मैं बहुरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सब सिर अहनस दात समार करे चार पदार्थ ले जग जन्मया शिव शक्ति करवास तरे लागी भूख माया मग जोहा मुक्त पदार्थ मोह खरे कर्ण पलाव करे वै पावै इत उद ढूंढत थक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कुटुंब सुप्रीत करे खावै भुग सुन सुन देख पैस दिखावै काल करे बिन गुर शब्द न अप पछाण बिन गुर सहे हर नाम न काल टरे जेता मोह मैं कर भूले मेरी मेरी करते छिन खरे तन तन बिनस संसै संसा फिर पछताव मुख धूर पर बिरद पया जो बन तन खिसिया कफ कंठ बरुदो नैनो नीर ठरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम नारद हरे सुरत गई काली हूं तौले किस न भाव है रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दोख लागा जम मार समारे नरक खरे पूर्व जन्म को लेख न मिटई जन्म मरा का को दोस्त रे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पै रस भोगन फोकड़ कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर

0: पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ प्रिया साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पढ़ी है जेते बरस बरस पढ़ी है जेते मास पढ़ी है जेती यार जा पढ़ी है जेते सास नानक लिख है एक गल हो रू मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बहु तीर्थ भविया ते तो लव्या बहु पे किया देही दुख दिया सो

ना पिटे हो जाए सोचे होए के जीव्या लगा प्रंसलू को हती जाए सुटे आ किसे लगा दो आन देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया किरता हो पापवित पापी सो तन गड़िया तुका पाया तित जित मुख नाम न उच्चरे बिना वैरस खाए नान किवे जानी है तित मुख

जाय। साचा सृजनहार जियो, सबना का दाता कर्म विधाता, दुख बिसारण हार जियो। तू सबनी थाए जिथे हों जाई,

केरे एक कड़ी मैं खोवे, हंस से हंसा बग से बगा, काट काट करे बिचार जियो, तू सबनी थाए जिथे हों जाए, साचा सृजनहार जियो, जिन एक मन ध्याया तिन सुख पाया,

तेन जम नेड़ न आवे, गुर शब्द कमावे। कब हो न आवे हार जियो, ते कब हो न हारें, हार हार गुण सारें। तेन जम नेड़ ना आवे, जमण मरण तिन्हा का चूका।

0: तेन सुख फल होवै। मन है सेजन जाह जियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारी योग सतसंगी जनों वड़ पागे, जिथे आप जिया ने अमृत वेले नूं मुख रखदे आ, सतगुरां दे पावन पवित्र सजे हुए दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन गुरु दर दे सतकार कीर्तनी जथे पासों सरवण कीते ने। सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण कीते हन। समा है पावन मुख वाक की कथा विचार दा। सेवा निभाउणगे सत्कार योग भाई गुरशरण सिंह जी चीमा, और तिना पासों सतगुरां वल्लों बख्शी हुए पावन मुख वाक की विचार सरवण करिए जी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला।

वो असर जरूर करेगी। आओ सारे राग सुही ललित सुही काफी, ओदे नाल जुड़ना करिए।

0: जय मात पिता सतमीत न पाई मानुआ नाम तेरे संग सहाई
1: जय मां ब्यान दूत जम तेरे तेरे केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माहे उदारी
1: अनेक गुण चरण कत नहीं तेरे हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे
1: सगलगेट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोड़ी बंद न परे हर का नाम जपत निस्तर
1: अनेक माया रंग देख न बजावे हर का नाम जपत गावे
0: जेह मार्ग हो जाते केला ते हर नाम संग होत सुहेला
1: ऐसा नाम मन सदा त्याइए नानक गर्म परम गत पाइए
0: छूटत नहीं कोट लखबाही नाम जपत तह पार पराही
1: अनेक विघ्न आए सिंगारे हर का नाम सतकाल उधारे
0: अनेक जोन जन में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम
1: मर कबू न तोवे हर का नाम कोट पाप होवे
0: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साध के संग
1: जे मार के करे जाए न कोसा हर का नाम था संतोषा
0: जह पेंडे महान गुवारा हर का नाम संगी उजियारा जय मां प्यान तप्त भो काम ते हर के नाम की तू पर शाम
1: जा तर काम तो जा करके ते नानक हर हर अमृत बरखे
0: भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात
1: हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
0: मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत बिवेक
1: हर का नाम जन को मुक्त जोगत हर के नाम जन को तृप्त भोगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग हर का नाम जन को मुक्त जोगत हर के नाम जन को तृप्त भोगत।

0: जानता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा।
1: हर हर जन के मालक जीना, हर पर जन को अपरख दीना।
0: हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अबर न जानी। आज पहर जन हर हर जपे, हर का भक्त प्रगट नहीं छपे। पार जाते हो हर को नाम, काम तीन हर हर गुण गाम।
1: उत्तम हर की कथा, नाम सुनकर
0: नाम की महिमा संत रज बस है। संत प्रताप दुरत सब नस है,
1: संत का संग वट भागी पाई है। संत की सेवा नाम ते आई है,
0: नाम तोल कछे आवर।

0: चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे।
1: जेको अपना दुख मिटावे आरा नाम दे सतगावे।
0: जेको अपनी शोभा लूरे साध संगे हो मैं शूरे।
1: जेको जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे।
0: जिस जन को प्रभु दर्श पियासा नानक ताके बल बल जासा।
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संजा का मिटे अभिमान।
0: आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना।

0: जगन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी।
1: अपनी गत में जानो आपे, अपन संगा प्रवराते।
0: तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर ना जान सकोए।
1: सर्व कर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म।
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर मत मल हिरिया।
1: सगल उद्यम में उत्तम पला, हर का नाम जपो जी सदा।
0: सगल वाणी में अमृत वाणी, हर को जस

0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद हुनर गुण गुण कछु न बूझे बक्स ले हो तो नानक सीजे जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव का मुल्ला
1: प्रसाद भोगे सब रसा सामग्री
0: दीने हस्त पाप कर नेता रसना तिसे त्याग वर संग रचना
1: ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नाने काढ़ लियो प्रव्यापे
0: आदि अंत जो राखन हार तिसे प्रीत न करे गवार
1: चाही सेवा नाम नित पावे तासो मुड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकर सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे
1: जाकी ठहर पावे दरगे मान तिसे बुसारे मुगद जान
0: सदा सदाए हो फूलन हार नानक राखन हार अपार जो छड़ना सो आस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने
1: छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग सहाय तिस पर हरे
0: चंदन ले पोतारे तोये गर्ता प्रीत पसम संग होए
1: अंधकूप में मृत्यु काल नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मान सजात लोक प्रचारक।

0: पहलो सुहान
1: अंतर अगन बातन सागर पात्र कैसे तरे
0: जाके अंतर बसे प्रभु आप नानक ते जन सहज समात
1: सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गले
0: कह बुजारत बूझे डोरा निस कहिए तो समझे पूरा
1: जतन करे तो ईश्वर भंग
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गबन
1: करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे
0: संग सहाय सुहावे न चीत जो बहराई तस प्रीत
1: के ग्रह पीतर बसे माया रंग रसे
0: दृढ़ कर मने मने प्रतीत काल नावे मूढ़े चीत
1: विरोध काम क्रोध
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर करम
1: कर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास
0: तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे
1: कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत
0: सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते होए स्वाग

0: दासा तूले पाछे पावे एक वास्त कर्ण बिखोट गवावे
1: एक बिना दे दस बिया ले ता मुड़ा को का करे
0: जिस ठाकर से होना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जिस जाने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अपनी अमान कश बाहर सावले अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी विश्वास न होवे
0: जिसकी वास्ते से आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे
1: चौगन करे निहाल नानक सहर सादयाल
0: अनक पात माया के हित सर पर होवत जान अनित
1: किसाया सो रंग लावे ओ बिन से ओ मान पछतावे
0: जो दिस सो चाल निहार लपट रहे हो तहे अंध अंधार
1: सो जो लावे ने
0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन तन कुटुंब सवाया मिथ्या हमे ममता माया
0: मिथ्या राज वन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने।

0: कार कोता वे मिथ्या मन पर लो लुभा वे
1: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास रे उपकारा
0: वैन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लये
1: व्यर्थी सातक की आरजा साच बिना कह होवत सुचा
0: व्यर्था नाम बिना तन अंद मुखावता के दुर्गंध
1: सिमरन रहन मिथ्या बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन मिथे सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ धाम रह ते अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत
1: प्रभु पर बीन बाहर पेख न काहू पीन
0: अवर उपदेश है आप न करे आवत जावत जन में मरे
1: जिसके अंदर मजे निरंकार जिसकी सीख करे संसार
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन चरण पर आता
1: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने
0: आपे आप करत नवेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप जान सकल ते रहत सब को जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस लई लड़ लाए थान थन अंतर है समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी निमखनी

0: जय प्रसाद छती अमृत खाहे ते छाय कर को रख मन माहे।
1: जय प्रसाद सुबंध तन लावे तिसको सिमन परम गत पावे।
0: जय प्रसाद सुख से वसे जय प्रसाद सुगंध तन लावे
1: तिसको सिमन परम गत पावे।
0: जय प्रसाद बचे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर।
1: जय प्रसाद ग्रह सुख बसना आठ पै सिमरो तिस रसना।
0: जय प्रसाद रंग रस को नानक सदा त्याय त्यावन जोग।
1: जय प्रसाद पाठ ब्रह्म हडावे जिसे त्याग तवल वावे।
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ता का जस गावी जय।
1: जय प्रसाद तुम सब न माने मुक्ता को जस रस बखाने।
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
1: जब तर के मन पावे नान पासे ती कर जावे।
0: जय प्रसाद रोग कंचन देही लिव लाभ होत सराम सने।
1: जय प्रसाद रहुला रहत मन सुख पावे हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिदर ठाके मन सारनी पर ठाकर प्रभ ताके।
1: जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु चे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भक्त करे।
1: जय प्रसाद भूखन पैरी जे
0: जय प्रसाद अश्वा अश्वा सवारी मन तिस प्रभ को कबू नाम बिसारी।
1: जय प्रसाद बाग मलक तना राग प्रभा अपने मना।
0: जैन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सज तिसे त्याई।
1: जिसे त्याए जो एक अलक यहाँ मन आन तेरी रखे।
0: जय प्रसाद करे पुन बदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
1: जय प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी।
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप।
1: जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह।
1: जय प्रसाद सुने का नाद जय प्रसाद देखे बसमाद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना।
1: जय प्रसाद पासना चले जय प्रसाद संपूर्ण भले।
0: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे।
1: ऐसा प्रभु त्याग वरगत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार।
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन भूल उता को जाप।
0: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे।
1: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तुते सोराच।
0: जय प्रसाद साहब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाओ आप गाए सुहा गुण गाओ।
0: प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास।
1: सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत दम होए।
0: सर्वनिधान प्रभु तेरी मैया हो कछु न किन्हू लया।

0: साध के संग में खुजल होत साध संग मल सगली खोत
1: साध के संग मिटे अभिमान साध के संग परमे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रवनीरा साध संग सब होत नवेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक पर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी
1: साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फूले
0: साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध के संग संगी रेन साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग ना कतहूं तावे साध संग स्थित मन पावे
1: साध के संग पाया ते मिलना साध संग नाम परम सो प्रसन्न
0: साध संग दसवां सा मीत साधु के संग महापनीत
1: साध संग के सो नहीं बैर साध के संग ना बिंगा पैर
0: साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नहीं हो ताप साध के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनियाई
1: साध के संग ना काबू तावे साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बसते गोचर ले है साधु के संग अजर सह है
1: साध के संग बसे तन ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ है सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान नान साधु के करवान
0: साध के संग सब को लिए उदार है साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है
1: साधु के संग सोतन पावे जिसन को सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा
1: साधु के संग पाप बलायन साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कुछ काल दर्शन पेट होत निहाल
0: साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग साध संग बिचर हर मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग ना बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म सागर रस बसे नान कुदरे साध सुन रसे
0: साध संग सुनो
2: साध के संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग ना मनते बिसरे साध संग सब पर निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रा मीठा साधु के संग कट का डीठा
1: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग
1: साध की महिमा बेद ना जाने जेता सुने तेता बखियाने
0: साध की उपमा तह गुण ते दूर साध की उपमा रही पर पूर
1: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा ऊंचते ऊंची

0: जैसे दल में कमल अलेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा रहे दुख, जैसे सुसर को शोक।
0: ब्रह्म ज्ञानी के दुर्समान, जैसे राज रंग को लागे तुल्पमान।
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीरे
0: ब्रह्म ज्ञानी का है गनाओ, नानक ज्यो पाव का सहज सुपाओ।
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैं न लागे जला।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रगास, ब्रह्म ज्ञानी के
1: जैसे पर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मिलकर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते

0: ज्ञान को पुरख कहिए जीवन मुक्त।
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जिस जिस का रखे तैसा तन नाओ।
0: आपे कर्ण क्रमण जोग, प्रभावे सोई फन होगा।
1: पसरियो आपो अंतरंग, लखन जाए पार ब्रह्म के रंग।
0: जैसी मत देते

0: मद विकराल कबू सर्ब की हो तरवाल
1: कबू
0: अब की रत में आवे कबू पला पला कहावे
1: कबू
0: पंडित करीब ज्ञान कबू मुँह तारी लावे ध्यान कबू कीट हस्त पतंग जिया अनेक जोन पर में परमिया
1: नाना जो जो सागी दिखावे जो प्रपावे तिवे नचावे
0: वो तिस पावे सो

0: एक जतन करा तुम नहीं दरवे दरगे को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकलावे
0: सर्व की रेंजा का मन होए को नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझे कछोए तब इसको सुनाई कोए
0: जब बह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीता तब लग नेचर नहीं चीता
0: जब लग मोह मगन संग माए

0: संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी,
1: संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे,
0: संत के दुखी को नहीं ठाओ, ना सत पावे ता लय मिलाए,
1: संत का दुखी अग

0: गुण गाए अमर त्रस चाखे
1: ओट गए संते दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया
0: नृत्य को जे वालन हार भूखे को देवत आधार।

0: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए।
1: रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान।
0: करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माए समाणी।
1: सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत पात।
0: सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बजाए तिसे सब भली।
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई।
0: सत बचन साधु उपदेश, सत जन जा कर दे प्रवेश।
1: सत निद बुझे जे कोई, नाम जपता की गत होए।
0: आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत।
1: जिसकी से सुकरने हार,
2: अवना भूज करत विचार।
0: करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया।
1: विस्मन विस्म पे विस्माद,
2: जन बुझा ते आया स्वाद।
0: आपके रंग राज जन रहे, गुर के बचन पदार्थ लहे।
1: ओ दाते दो काटन हार, जाके संग करे संसार।
0: जनका संग जनके संग, जनका सेवक सोबट भागी। जनके संग एक लेवला।

0: तस्को होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुर की महले।
0: इस विश्व गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने।
1: सो सतगुरु जन ने हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ।
0: धर्म ने धाम जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता।
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछु परम।
0: सियान पद न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए।
1: सब दर्शन देख तुनीत पर
0: हेठ संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे।
1: सुनकर भजन कर आगाने मन संतो आत्म पतियाने।
0: पूरा गोर ख्याओ जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत।
1: गुण बिन कीमत नहीं पाए ना इस पावे।
0: एक औस्त अनेक सत पुरख पूरन बवेक।
1: काऊ बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर परम निर्वाणी।
0: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई।
1: अनेक भक्त बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे।
0: सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा।

0: सो सुख साधु संग परीत
1: शोभा को करे पलि करनी सा शोभा पजार की सनी
0: अनक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए
1: सर्व निदान में राम निदान जप नानक दरगे परवान
0: पर पर्व दो हर के नाए दैद सतावते आवे ठाए
1: ताको विघ्न न लागे कोई जाके हृदय बसे हर सोए
0: ठंडा हर नाओ सिमर सिम सदा

0: सेव आवत्या शरण गुरुदेव
1: हरे सिमर प्राण धारे
0: पावना छूटन हारे सिमर शास्त्र

0: सतगुर ते निर्मल मत लई।
1: जनको प्रभु दयाल सेवकिनो सदा निहाल।
0: बंधन काट मुक्त जन पिया जन मरण दुख परम गया।
1: इस मुनि श्रद्धा सा पूरी सत्संग जूरी।
0: का सतन लिया मलाए नान भक्ति नाम समाए।
1: सोख विसरे कारण पाने सोख विसरे जी किया जाने।
0: सोख विसरे जिन सब कुछ दिया सोख विसरे जे जीवन जिया।
1: सोख विसरे कर मेरा के गुर प्रसाद को बुलाके।
0: सोख विसरे जे बिकते कांड है गुर जन्म जन्म का टूटा गंड है।
1: गुर पूरे तते बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया।
0: त्याग जपो हर नाम सिमर सिम सदा
2: त्याग जपो हर नाम
0: साजन संत करो काम। त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर

0: तब नरक सुर को कौन अवतार
1: निर्गुण
0: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कवन डर कवन का डरे
1: करने
0: अविनाशी सुख अपने आसन।

0: सो सब जगत पर
1: जाको प्रणियो आप जाए सच नाम सोई जन पाए
0: ओ समरसी तत का बेटा नानक सग सिस का जेता
1: जी जंतर सब के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ
0: राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मना विसारे
1: तिस

0: का
1: मिठाई
0: अमृत प्राप्त का नाम देहि में इसका विश्राम
1: जाइए
0: कैसे आप दिखाए ना ते जाने सो जी पाए
1: सो अंतर सो बारे अनंत कट कट व्यापरिया भगवंत
0: धन माय आकाश पे आल सर्व लोग पूर्ण प्रतपाल
1: पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: मोट पानी बे संतर माहे चार कुंट दद से समाहे
1: इससे पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: बे प्राण से मर्त में देखा ससिय सुन खतर में एक
1: वाणी प्रभु सबको बोले आप ढोल कबू डोले
0: कलाकार खेले खेला मोल ना पाइए गुणे अमोला
1: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तारे स्वामी पोत
0: घर पर सार परम का नास नानक दिन का मैं ए विश्वास
1: संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म
0: संजना सुनो शुभ वचन सर्वव्यापी राम संग रचन
1: रहत सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो ए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभु जाने
1: अंदर बसे बार पी होई नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत तिस प्राप्ते सकल उत्पात
1: इस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार
0: अनि कला लखी न जाए जिस पावे तिस ले मिलाए
1: कवन नेट कवन गए दूर आपे आप भरपूर
0: अंतर गाते जिसे आप जिन आए ना ते जन आप जाए।

0: प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उद्रेतन के साथे
1: करके
0: बैर पे सब रेन अमृत नाम साध संग लेना
1: प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव
0: आज जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन सुना कहते
1: प्रसाद प्रतारी नानक हमारी
0: राव की सत करो संत मीत सावधान कागर चीत
1: सुमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो तन दान
0: छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सबदे उच्च पाए स्थान पूर्ण होवे अमन जान
0: हर तन खार चले जन सोए नान से प्राप्त होए
1: प्रेम शांत रिद नव नित बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान से सुतम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रास सबके मात सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर्थ तत्व का बेता सम दस्ती एक दिस

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरें घर नौ निदयावे ताय। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाही

विषादान प्रोसादान दाना श्रदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानीवा मत उची मत दा राखा वाहगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे माण नितानिया दे तान न्योटिया दी ओट सचे पिता अकाल पुरख धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी का कुटान कुटान शुकराना आप जी ने उद्दम बख्शे। पावन हजूरी विच हफ्तावारी दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच आप जी की इलाही बाणी श्री सुखमणी साहब दे पाठ कीर्तन की अरदास कृपा करनी मेहर करनी इसे तरह आप जी की पावन बाणी पढ़न सुनन दे उद्दम बल बख्शने पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समुचियां संगतां दे हिरदियां ते वसाउणा सतगुरु जी समूह परिवारां विच आपसी एकता इतफाक प्रेम भरोसे दीआं दातां बख्श के निवाजणा सभनां नूं चढ़दीआं कला तंदरुस्तियां बख्शणियां। सतगुरु जी आप जी दे दर घर दे सेवक पुरेवाल परिवार वल्लों बच्ची सोनिया कौर दे बारहवें जन्मदिन की खुशी विच आप जी का शुकराना करदिआं बेंत माया देगां लई अरदास करवाई जांदी है। आप जी ने कृपा करनी मेहर करनी बच्ची सोनिया कौर दे सिर उत्ते मेहर भरिया हथ रखना परिवार वल्लों आप जी दे दर उत्ते सुंदर पछाके भेट कीते गए आप जी ने दर ते प्रवान करने कृपा करनी समुचे परिवार नूं तां दुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्श के निवाजना। सतगुरु जी इसे तरह बीबी रिशपाल तुंग वल्लों अपने बचे हिम्मत सिंह ते गुरप्रीत कौर दी तंदुरुस्ती लई अरदास बेनती है। आप जी ने कृपा करनी मेहर करनी आप जी के हजूर समूह संगत वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है दर ते प्रवान होवे करो कृपा अपने इलाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पही अकाल की तबै चलायो सब

हर आपे पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगर चुकावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगत का धन्यवाद शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु का। सतगुरां दी पावन हजूरी विच हर हफ्ते मंगलवार वाले दिन बीबियां वल्लों रल मिल के श्री सुखमणी साहब दे पाठ ते कीर्तन कीते जांदे ने। सो आप जी ने हाजरियां भरियां, सो आओ समा है साध संगत जी गुरबाणी दे श्री सहज पाठ दा जो कि सेवक परिवारां वल्लों चल रहे ने, तो आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु की अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ सरवण करो। समूह पहुंचियां होईयां संगतां दा धन्नवाद। कड़ाह प्रसाद दीआं देगां दे वरतारे होणगे, गुरु के लंगर तैयार ने, आप जी ने लोड़ मुताबक छक के जाने जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

चुके तक तके, हर जन हर हर होया नानक, हर इके आसा महला चौथा। हर अमृत भगत भंडार है, गुरु सतगुरु पासे राम राजे, गुरु सतगुरु सच्चा शाह है, सिख दे हर रासे। धन धन बनजारा बणज है, गुरु शाह शबासे, जन नानक गुर तिन्ही पाया, जिन धुर लिखत लिलाट लिखासे। सच शाह हमारा तू तनी, सब जगत बनजारा, राम राजे सा भांडै, तुदै साजिया विच वस्त हर थारा। जो पावै भांडे विच वस्त, सा निकलै क्या कोई करे विचारा, जन नानक को हर बख्शिया, हर भगत भंडारा।

चलाए। जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए, जन नानक सात गुर भेटिया हर नाम तराए। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे।

चौथा शांत घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे हर गुरु मिलावो मेरे प्यारे कर वसै हरे हर रंग रलिया मानो मेरे प्यारे हर कृपा करे गुरु नानक तुठा मेरे प्यारे मेले हरे मैं प्रेम ना चाखिया मेरे प्यारे भाओ करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे

शीतल अगाले अमृत बाणे साजन संत सिठा कहो नानक हर सिव मन मानिया सो प्रभ नैणी डिठा।

संग माणी। हर संता हर संत सजन मेरे मीत सहाय राम अनभागी वडभागी सत्संगत पाई राम वडभागी पाए नाम त्याए लाथे दुख संतापै।

खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराधे ज्ञानी जाप जपे जाप ताप संयम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुदा तीर्थ है मजन मिलन स्यो निरंजना

अगणत यथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता ना दूर संगी जाहरा।

शरण सिधे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदारण हर हरे सागर संसार भव उतार नाम सिमरत बहुतरे।

सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मानक निधा मन निधाना पावहे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावहे।

चाप मंगल रस भरे आंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन छपाई प्रभ त्याई संजोग शाह शुभ गणया बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनया।

मन मुखो हंकारी हर के दा जीवे प्रा लग प्रभ की चरणी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर शरणी।

कमला प्रंपीत कमला प्रंपीत हे तिखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर मन कोर गहबर मन कोर हे गृह मूसत मन चोर है दिन करो अन दिन खात।

तीर्थ नावै अचा पूजा गर्भास बेकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का कार।

पौड़ी। बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो, न कर प्रकट आख सुनाया। सतगुर मिलया सदा मुक्त है, जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम ही विचार है, जिन सचे स्योंच

सेवक इति संतोख जिनी सचो सच त्याया ओनि मंदै पै न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनि दुनिया तोड़े बंधनान पानी थोड़ा खाया।

तिस जवारी स्वास्थ्य सतिस दीवाने अभग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।

नाम संपद गुरु नानक को दी ओह मरा न आवे जाई। गुजरी महला पंजवा ते पदे कर दूजा को अंकार सतगुर प्रसाद। दुख बिनसे सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई। नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया बिनस न आवे जाई। हर जप माया बंधन टूटे कई कृ फल दयाल प्रभ मेरे। साध संगत मिले छूटे रहाओ आठ पैर हर के गुण गावा। भगत प्रेम रस माता हर सोग दो माहे निराला। करण हार पछाता जिसका साथ तिन ही रख लिया। सगल जुगत बन आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला। कीमत कह न जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाता तो पवित्र लिए करे अपने। सगल करत नमस्कार बरन जात को पूछे नाही बांछा चरण निवारु। ठाकुर ऐसो नाम तुम हरु सगल सिठ को तनिक ही जय जन को अंग निरारु। रहाव सा संग परम गत पाई हर कीर्तन आधारु। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दास रु मुक्त भयो चमियारु। गुजरी महला पंजवा है नाही को बुझन हारु। जाने कवन पता से ब्रांचियर सगल मोन जान। गहना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा। सुनिया अवर अवर भेद बुझिया बकन कथन रहता रहा। आपे भगता आप स्वामी अपन सांगरता। नानक प्रभ पूरे हो है पेख्यो जतर कथा। गुजरी महला पंजवा माता मसूरत अवर स्यानप। जान को कछु न आयो जहां जहां अवसराय बन्यो है। तहां तहां हार त्यो प्रभ को भगत वैशल बिरधायो। जहां जहां अवसर आय बन्यो है तहां तहां हर त्यो प्रभ को भगत वैशल बिरधायो। कार प्रतपाल बार की न्याई जन को लड लडायो। रहाओ जब तब संजम करम धर्म हार कीर्तन जन गायो। शरण परयो नानक ठाकुर की अपय दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राति अराधो प्यारो। निमख ना कीजै ढीला संत सेवा कर पहमनी लाइय। त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला। बस रहो यरै कै संगे पेख मोहो मन लीला। रहाओ जिस सिमरत मन होत आनंदा उतर मनो जंगीला। मिलबे की महिमा भरन ना साको नानक पर प्रीला। गुजरी महला पंजवा मन जोगी शास्त्र कहाव सब किन्ने बस अपनी। तीन देवर कोड तेती सा तिन की हैरत कशना रही। बलवंत व्याप रही सब मही अवन जानस को मरमा। गुर कृपा ते लही रहा जीत जी जीते सब थाना। सगल पवन लपटही कह नानक साथ ते भागी हुए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना थया। हद राखे परमेश्वर सगला दुरत मिटाया। ठाकुर हुए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है। हे उभर बाल गोपाल रहाओ मिल वर नारी मंगल गाया। ठाकुर कह जयकार कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब कह गया उधार। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुध पंदप हो तिनका बल है थूरा। अनक रंग माया के पेखे की साथ न चल पूरा। ठाकुर तुझ बिन अहिन मूरा मोह अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहु तुमरा धूरा। रहाओ बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जूरा। सा संग नानक दर्श पायो बिनस सगल निहोरा। गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम उत जावे प्रभ सेती रंग लाई। मन मन को ए उपदेश दृढ़ावै सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संसहाई जिस भेटे तूठे माया बंद बिसर ना कबहू जाई। रहाव करत करत अणक बहु पहंती नीकी ए ठहराई। मिल साधु हर जस गावै नानक पाव जल पार पराई। गुजरी महला पंजवा खिन मह थाप थापन हारा कीमत जाए ना करी। राजा रंक कर खिन पीतर नीचे जोत तरी त्याइये अपनो सदा हरी। सोच अंधेसा ताका कहाँ करिए जा मैं एक करी। रहाव
ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰ ਭਰੀ ਅਚੇਤ ਇਆਨੇ ਬਾਰਕ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਧਾਰ ਕਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ ਤਹਿ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਰਪਤ ਪਾਲਕ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਰਹਾਉ ਸਾ ਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਹਾਰੋ ਤੁਮ ਹੀ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਹੀ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਪਈ ਕਰਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਆਸ ਬਡਾਣੀ ਲਾਹੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸ ਦੀਜਾ ਜਸ ਗਾਵੋ ਨਿਸ ਅਰ ਭੋਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦਾਸ ਪਗ ਚਾਰੋ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਬੀਆ ਨ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਤੋ ਅਰਸਨ ਅਰਾਦੋ ਨਿਰਖ ਤੁਮਰੀ ਉਰ ਰਹਾਉ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਕਰ ਜੋਰ ਰਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਰੋ ਉਧਰ ਸਾਖੀ ਫੋਰ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਅਰ ਰੁਦਰ ਲੋਕ ਆਈ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਤੇ ਥਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕ ਮਲਮਲ ਧੋਵੈ ਪਾਏ ਅਮੁਹੇ ਹੇ ਆਏ ਪਰਯੁਸਰ ਨਾਏ ਗੋਹ ਜ ਪਾਪ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਰਜਾਰਾ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਓ ਹੈ ਬਤਾਇ ਰਹਾਉ ਸਿਸਾ ਮਾ ਸਾਧਕ ਜਾਖਿਰ ਕਿੰਨਰ ਨਾਰ ਰਹੀ ਕੰਠ ਰਜਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਗ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਦਸੀ ਦਾਸ ਸਾਜ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਆਪ ਜਸ ਮਿਟੇ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੀਰਤ ਦਰਗ ਵੈਸਨ ਪਾਈਐ ਜਬ ਕੀ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਹੋਏ ਖਿਨ ਮੈਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਾ ਤੇ ਘਾਲ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈਏ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਰਹਾਉ ਮੋਹੇ ਸਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਪੰਜਰ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਤੇ ਹਰ ਦਸ ਪੈਜਰ ਖਾਈਐ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਸਵੰਬਰ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਫਾਲ ਨਾ ਹੋਵਤ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰੇ ਉਧਾਰ ਮਾਹਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਰਾਚ ਸਗਲ ਜੀ ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧਾ ਤਾਹੂ ਕਹੋ ਤੂੰ ਜਾਚ ਰਹਾਉ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖਾ ਤਿਸ ਕਹਾ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਨਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਓ ਗੁਰ ਅਵਖਦ ਉਤਰ ਗਏ ਸਭ ਤਾਪ ਰਹਾਉ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਹਾਰ ਮਿਟੇ ਵਿਆਧ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹ ਸਵਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬਹੂ ਹਰ ਸੋ ਚੀਤ ਨ ਲਾਇਓ ਤੰਦਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਆਵਦੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਇਓ ਰਹਾਉ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟੇ ਅਣਕ ਜੁਗਤ ਕਰਤ ਹਯੋ ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਗਨੀਐ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਖਾਇਓ ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਗੰਨਾ ਮੋਹੇ ਕਮਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਇਓ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਵੰਤ ਛੋੜ ਆਣ ਵਿਵਹਾਰ ਮਿਥਿਆ ਭਾਜ ਸਦਾ ਭਗਵੰਤ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਏਕ ਆਧਾਰ ਭਗਤਾਂ ਈ ਦਿਆਗੇ ਟੇਕਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦੀਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਸਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਗਹੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਰਵਾਲ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਿਧ ਲਹੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਾੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਤ ਸਰਣੀ ਆਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਰੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧ ਸਰਬ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਪਾਵਹਿ ਮਿਟੈ ਸਗਲ ਉਪਾਦ ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਪਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨਾਨੀ ਕੋਏ ਈਤ ਉਤਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਰਬ ਰਵਿਆ ਸੋਏ ਕੋਟ ਜਤਨ ਉਪਾਮ ਮਿਥਿਆ ਕਸ਼ਨ ਅਵੈ ਕਾਮ ਸਰਨ ਸਦੁ ਨਿਰਮਲਾ ਗਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਨਾਮ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਚਾ ਸਰਨ ਸਾਧੂ ਜੋਗ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦ ਹੀ ਰਮੋ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾ ਸਾਸ ਅਰਾਧ ਹਰ ਹਰ ਲਹਿ ਜਾਏ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪਵ
मिली निर्मल थाव रहाव। सत्संग धर्म मेहमान आठ पहर आराध। काम क्रोध अहंकार बिनस मिट सगल उपाहद। अटल छेद अभेद स्वामी सरन ताकी आओ। चरण कमल बराद हिरदा एक सोन लिव लाओ। पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी बख्श लीने आप। सर्ब सुखर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ त्याग गई संकट तुर दुख निरपय बिनासे पाप गए निकूट। हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोबिंद त्याए। हे महा निर्मल रीत रहाओ जाप तप नेक करनी सफल सिमरत नाम कर। अनुग्रह आप राखे पय पूरन काम सा सास न बिसर कबहू। ब्रह्म प्रभ समर्थ गुण अनकरसना क्या बखाना। अगणत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करन। अटल पदवी नाम सिमरन दृढ़ नानक हर हर शरण। गुजरी महला पंजवा अहं बुद्ध बहु महा दीर्घ। अहं बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग। हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग। मन तन बांछी जन तूर कोट जन्म के लाहा पत। गोबिंद लोचा पूरा हाव आद अंते मद आसा कुकरी बिकराल। गुर ज्ञान कीर्तन गोबिंद रमण काटिए जम जाल। काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवा गवन। प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन। मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत। जप राम नाम दुख निवार मिल हर जन संत। सर्व सिद्ध भ्रम ते पुकार कथा नाही छोट। हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ कही नानक ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पद एको अंकार। सतगुर प्रसाद आराद श्रीता सफल मूर्त कारण कारण जोग। गुण रवण श्रवण अपार महमा फिर न होत वियोग। मन चरनार बिंद उपास काल कलेश मिटंत। सिमरन काठ जमदूत फास रहाव। सतर दहन हर नाम कहन अवर कशना उपाव। कर अनुग्रह प्रभु मेरे ननक नाम सुहाव। गुजरी महला पंजवा तू सम्राट सन को दाता दुख भंजन सुख राय। जाहे कलेस मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाय। गोविंद तुझ बिन अवर न ठाव कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी। जपी तुम्हारा नाउ रहाव सतगुर सेव लगे हर चरणी बड़े पागले वे लागे। कबल प्रगास पए साध संगे दुरमत बुत त्यागी। अठ पर हर के गुण गावै सिमर दीन दयाला। आप तरह संगत सब उदरै बिनसे सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत बोत प्रभ साथ। शरण पर नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपति आम हला पहला कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले। बरजत चोरी थाव त्रहद समाल रखे जो नानक। मोख मुख सो पव चेतो बास जो बनबाली। राम हृदय जप माली रहाव। उर्द मोख मूल जिस साख तलाहा। चार बेत जित लागे सहस पाए जाए ते नानक। पार बम लिव जागे पार जात कर आंगन। मेरे पोह पपत्र तत डाला। सर्ब ज्योत निरंजन शंभू छोडो भोजन जाला। सुन सिख बंते नानक बिन वह छोडो माया जाला। मन बिचारे कलेव लागी पुन नरप जन्म ना काला। सो गुरु सो सिख कथी ले सो वैसे जाना रोगी। तिस कारण काम न धंधा नाही धंधा गिरही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजी अले। लोभ मोह तिस माया मन तत् अवगत ध्याया। गुर प्रसादी पाया ज्ञान त्यान सब दात कथी अले। सेत वरण सब दूता ब्रह्म कमल माद तस साद। जगत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाथला। नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः गर्भं बिखता जमृत पी आया। गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत ना पर सुमहार। जैसी पूख होए अवंतर तू सम्राथ सच दिवनहार। ऐ जी जाप तप संजम सच धार। हर नाम दे सुख पाई
तेरी भगत परे भंडार रहा सुन समाध रह लिव लागे एकाएकी शब्द विचार। जल थल तरन गगन ता नाही आपे आप किया करतार ना तद मगन न छाया ना सूरज चांदना जोते पार सर्ब दृष्ट लोचने बंतर एका नदर सोत्र पवन सार पवन पानी अग्नि तन किया ब्रह्म विश्व महेश आकार। सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात कर अपना विचार कोट तेतीस जाचा प्रभ नायक देंदे तोट भंडार नाही भंडार पौद पांडा कश नहा पांडा कश ना समावा सीधे अमृत पर निहार सिद समाध जंतर जाचा रेद से जाच कर हे जयकार जैसी अप्यास हो मन अंतरा तैसा तैसो जल देव प्रकार बड़े पागुर सेव है अपना पेद नाही गुरदेव मुरार ताको काल नहीं जम जो है बुझे अंतर शब्द विचार आप तो वरना मांगो हर पे नाम रंजन दीज है प्यार नानक चातरक अमृत जल मांगे हर जी दीज कृपा तार गुजरी महला पहला ऐ जी जन्मर आवे फन जावे बिन गुर गत नहीं काई गुरमुख प्राणी नामे राते नामे गात पात पाई भाई रे राम नाम चेत लाई गुरप्रसादी हर पव जा चाहे ऐसी नाम बडाई रहा ऐ जी बहुते पेख भिरे करे भिख्या को केते उधर भरन के ताई बिन हर भगत ना सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाई ऐ जी काल सदा सिर उपर ठाडे जन्म जन्म बैराई साचा शब्द रते से बाचे सतगुर बूझ बुझाई गुर प्रसादी जोहे न सके दूत न सके संताई अवगत नाथ नरंजन रते निरपल सुसल बलाई ऐ जियो नाम दृढ़ो नामे लेवे लाभो सतगुर ठेक टिकाई जो तिस भाव सुई करसी कीर्तन मेट जाई ऐ जी पाक परे गुरदास सरन तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई अब तब इको एक मुकारु अजुगा सखाई ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझ सुबन आई कर कृपा गुरदास दिखाव होमै शब्द जलाई ऐ जी क्या मांगो केश रहना दीसा है इस जग में आया जाई नानक नाम पदार्थ दी जय हृदय कंठ बन्ना गुजरी महला पहला ऐ जी ना हम उत्तम नीच न मध्यम हसर नागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बिजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुरु वाके हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहा हार गुण रसन रव प्रभ संगे ज्योतिष पव सहज हरी बिन हर नाम मिथा जग जीवन हर बिन निफल मेख करी ऐ जी खोटे ठोर नाही कर बाहर निंदक गत निकाई रोज करे प्रभक्षण मेटे नित ने चढ़ सवाई ऐह जी गुर की दात न मेटे कोई मेरे ठाकुर आप दिवाई निंदक नर काले मुख निंदा जन गुर की दात ना पाई ऐह जी सरन परे प्रभक्ष मिलावे बिलमना अदुआर राई आनंद मूल नाम नासिर नाथा सतगुर मेल मिलाई ऐह जी सदा दयाल दया कर रविया गुरमत प्रमण चुकाई पारस पेट कंचन तत हुई सतसंगत की वडियाई हर जल निर्मल निर्मान सनानी मज्जन सतगुर पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मिलाई तू वड पुरख गम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीज जुग जुग शब्द सलाही तू वड पुरख गम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीज जुग जुग शब्द सलाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जीओ आप लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ सरवण कर रहे सी हुण समा है शब्द चौंकी सोदर दा सेवा निभारे हन सत्कार योग भाई साहब भाई हरमनदीप सिंह जी तिना दा रागी जथा आओ तिना दे पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन नाल जुड़िए जी। वाहिगुरु जी का खालसा।